Mirchi. It's hot.

मेरी बेस्टी ने डिक्लेयर कर दिया है दैट यूजिंग हनी एंड व्हिप्ड क्रीम व्हाइल यू आर गेटिंग नॉटी विद योर पार्टनर इज एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल. शी वाज लाइक, रोशी आप इतने इन्वेंटिव और इमेजिनेटिव हो सकते हो व्हिप्ड क्रीम के साथ, हनी के साथ और इवन मेल्टेड चॉकलेट के साथ. लाइक ये आइडियाज़ लोग अपनी डेली लव लाइफ में क्यों नहीं यूज़ करते. आई वॉज लाइक, बिकॉज खाने की चीज़ें किचन में होती हैं और नॉटी चीज़ें बेडरूम में. एंड शी वाज लाइक, यो सो बोरिंग. मुझे फॉर वन नहीं लगता है कि मैं बोरिंग हूँ और ये मैं इतने सालों से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सीरियसली हाउ कैन यू गेट खाने की चीज़ें इनटू योर एक्ट ऑफ गेटिंग नॉटी एयू. लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो मेरी बेस्टी की तरह हु थिंक्स इट्स अ ग्रेट आइडिया, आई मीन आप कितनी इमेजिनेटिव चीज़ें कर सकते हो रियली. अगर आपको ऐसा लगता है प्लीज़ इस पर थोड़ा शेड सम लाइट ऑन दिस फॉर मी. और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हैं इंस्टा पर या एफ बी पर. मान लीजिए कि मैं ये एक ओपिनियन पोल कर रही हूँ, खाने की चीज़ें बेडरूम में हाँ या नहीं, इसका जवाब भेजिएगा. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड व्हाइल यू हिट मी अप होपफुली विद द राइट आंसर, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: कुछ तो बदल गया है बॉलीवुड में। पहले फिल्म में सुपरस्टार हो तो एक्साइटमेंट अपने आप आ जाती थी, बड़ी फिल्म हो तो थिएटर जाना ऑलमोस्ट कंपलसरी था। लेकिन आज नाम बड़ा हो सकता है, फिल्म को फिर भी खुद को प्रूव करना पड़ता है। शायद बॉलीवुड बदला है, लेकिन मुझे लगता है असली बदलाव हम में आया है। हम सब अब सिर्फ स्टार्स को नहीं देखते, सिर्फ स्केल से इंप्रेस नहीं होते, सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर टिकट नहीं खरीदते। हम डिसाइड करते हैं कि क्या देखना है, क्या सुनना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है। शायद इसलिए बॉलीवुड को समझने का सबसे ऑनेस्ट तरीका उसकी अनाउंसमेंट्स नहीं, उसकी ऑडियंस को सुनना है, और हम वही करने वाले हैं। हाय, दिस इज द मिर्ची टॉप 20। माय नेम इज सुरेन सुंदरम, एंड शुरू करते हैं उस गाने से जो एक सिंपल बात याद दिलाता है। हाइप खत्म हो जाती है लेकिन म्यूजिक रह जाता है। शान एंड सुखविंदर सिंह की आवाज में दी ओजीज, दिस इज हैवान का गाना रंगियारा, कंपोज बाय प्रीतम दा, एंड इट्स द फर्स्ट सॉन्ग हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20।
3: नंबर 20।

कभी नोटिस किया है, कुछ गाने एक ही दुनिया के नहीं लगते। माशूका को जरा ध्यान से सुनो, एक साइड पर मेलेडी है और दूसरी तरफ देयर इज दिस प्रोडक्शन। दोनों की लैंग्वेजेस काफी अलग है, फिर भी गाना एक ही आइडेंटिटी रखता है। इसे कहते हैं जॉनर हाइब्रिड। सिंपल भाषा में मेलेडी एक दुनिया से होती है और बीट दूसरी दुनिया से, और जब दोनों सही हाथ में मिलते हैं तो तीसरी दुनिया पैदा हो जाती है।

बेशरम रंग एफ्रो बीट और लैटिन इलेक्ट्रॉनिक टेरिटरी में चली जाती है, लेकिन शिल्पा राव की आवाज यार, वो तो ऐसा लगता है कि उनकी आवाज में गजल वाली नजाकत है। एंड देन देयर इज दिस।

तुमियों में मेलोडी एक हिंदी गजल की तरह दिल से निकलती है और पीछे पियानो और स्ट्रिंग्स उस इमोशन को ऑलमोस्ट एक वेस्टर्न क्लासिकल स्केल दे देते हैं। एक तीसरा गाना भी है कि आपको अच्छी तरह मालूम है, अंधेरा।

0: चन्ना मेरेया, सूफी मेलेडी, उर्दू अल्फाज, लेकिन गिटार और ड्रम्स उस हार्ट ब्रेक को आगे ढकेल रहे हैं। यानी जॉनर बदल रहा है, इमोशन नहीं। और अब विशाल मिश्रा इसी गेम को और ज्यादा तोड़ रहे हैं। अ सोलफुल हिंदी मेलेडी, पर इट्स गॉट ईडीएम, इट्स गॉट डबस्टेप, इट्स गॉट रैप, यानी कि तीन अलग अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स एक ही गाने में। जॉनर की बाउंड्रीज म्यूजिशियन बनाते हैं, म्यूजिक खुद नहीं। ये है वक्त फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक, नंबर 18 पर डेब्यू विशाल मिश्रा और कौशल किशोर की कोलैबोरेशन।
1: नंबर 18

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 It's hot. Suren ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 15.

हमारी प्रॉब्लम इमेजिनेशन की तो कभी थी ही नहीं। इंडिया में कहानियों की कमी नहीं है, ऐसे हीरोज जो उड़ते हैं, ऐसे योद्धा जिनके पास इम्पॉसिबल शक्तियां हैं, ऐसे वेपन्स, ऐसे अस्त्र जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, गॉड्स, डीमंस, शेपशिफ्टर्स, इमॉर्टल्स। फिर भी बॉलीवुड के सुपर हीरोज की दुनिया में जाते ही जादू थोड़ा कम हो जाता है यार। मेन स्ट्रीम सिनेमा में सिर्फ दो ही फिल्म्स ऐसी याद आती हैं जो इस जॉनर को सच में क्रैक कर चुकी हैं। एक 1987 1987 ऑलमोस्ट 40 साल पहले आई फिल्म मिस्टर इंडिया एंड देन ऋतिक रोशन की कोई मिल गया, और दोनों की एक बात कॉमन है, उन्होंने फिल्म की शुरुआत सुपर हीरो के साथ नहीं की, इंसान के साथ की। पहले हम उनके साथ जुड़े, फिर उनकी दुनिया में कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ, एंड शायद यही बॉलीवुड बार बार फिसल जाता है। हम सुपर हीरो बनाते वक्त सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहले डिजाइन करते हैं, उसकी यूनिवर्स बाद में। और बॉलीवुड का दूसरा प्रॉब्लम शायद यही है कि हम सुपर हीरो फिल्म को भी कभी कभी अपनी एग्जिस्टिंग मसाला वाली ग्रामर से लिखने लगते हैं। हीरो है तो रोमांस होगा, रोमांस है तो गाना होगा, विलेन है तो बड़ा एक्शन होगा, और सब कुछ बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि बिगर इजंट ऑलवेज बेटर। और इसीलिए आमिर खान, आर बाल्की और साजिद नाडियाडवाला एक सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि आमिर एक ऑब्वियस सुपर हीरो नहीं है, बाल्की ऑब्वियसली एक सुपर हीरो फिल्म मेकर नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आमिर खान सुपर हीरो बनेंगे कि नहीं, सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड आखिरकार एक ऐसी सुपर हीरो दुनिया बना सकता है जो बॉलीवुड की फिल्म ना लगे जिसमें सुपर हीरो हो। शायद इसी का जवाब हमारी सबसे पुरानी कहानी के पास है। बीच में वैसे एक गाना है नंबर 14 पर कॉल्ड साड़ी फ्रॉम धमाल 4, लेकिन उसको जरा साइड में करते हैं क्योंकि जिस फिल्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी कहानी है, नितेश तिवारी की रामायण। और जिस कहानी में भगवान है, राक्षस है, बानर है, अस्त्र है, और वो सफर है जो हजारों सालों से हमारी कल्पना के हिस्से बने हुए हैं। उसका पहला म्यूजिकल ग्लिम्स किसी सुपर हीरो एंथम की तरह नहीं है, वो एक प्रार्थना की तरह है। एयर रहमान के म्यूजिक में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज। नंबर 13 पर यह है जय जय राम।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 10।

0: यार कभी कभी किसी फिल्म को देखते हुए ना एक अजीब सी चीज होती है। फिल्म अच्छी लगे या बुरी, लेकिन उसके कैरेक्टर्स से एक रिश्ता नहीं बन पाता है, एक अपनापन फील ही नहीं होता है। एंड कॉकटेल के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हुआ था। देखो फिल्म की कहानी को लेकर बहुत ओपिनियंस थे, लेकिन मेरे लिए जब मैं फिल्म के एक्टर्स के इंटरव्यू सुन रहा था यार, वो कनेक्शन नहीं बन पाया था। उनकी बातचीत ज्यादातर इंग्लिश में हुआ करती थी, एंड शायद इसी वजह से पता नहीं क्यों स्क्रीन पर जब मैं उस दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था तो एक फासला सा महसूस हो रहा था। क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, भाषा हमारी कल्चर होती है, हमारी मेमोरी होती है, हमारी इंस्टिंक्ट होती है। एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, नाम है उनका जयदीप अहलावत, और उन्होंने इस चीज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की थी।
1: मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं इतना सरप्राइज हो गया जब मुझे पहली बार किसी को देखा कि एक्टर हिंदी नहीं पढ़ सकता, लिखी हुई हिंदी नहीं पढ़ सकता। अगर वो देवनागरी में लिखा गया है नहीं पढ़ सकता उस स्क्रिप्ट, एंड मुझे लगा कि इससे बुरा नहीं हो सकता। ऐसे ही नॉर्मल नहीं, नहीं कोई आ गया बेचारे किसी को ऐसा कहीं केरला से, नहीं नहीं हिंदी भाषी प्रदेशों से निकले हुए लोग और वो हिंदी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं प्रॉपर। हर दूसरे वर्ड पे फंबल है, हर दूसरे वर्ड, क्योंकि उनको सिर्फ सुनने की आदत है, रोमन में दे दोगे तो पढ़ लेंगे।
0: देखो मुझे लगता है कि जयदीप भाई की बात का असली वजन देवनागरी पढ़ पाने या ना पढ़ पाने में नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप हिंदी सिनेमा के एक एक्टर हो और हिंदी आपके लिए सिर्फ वो भाषा है जो आपको हेलो कोच या स्क्रिप्ट से सीखनी पड़ती है, तो भाई कुछ ना कुछ रास्ते में जरूर छूट गया है। और इसलिए मुझे कुणाल खेमू जैसे एक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। कुणाल ने खुद इंग्लिश और हिंदी के इस डिवाइड पर बहुत कुछ बोला है। आप यूट्यूब पे जाके कोई भी उनका इंटरव्यू देख लो, उनकी हिंदी लेकिन अगर आप सुनोगे तो वो ट्रांसलेटेड नहीं लगती, वो यार अपनी लगती है। शायद इसलिए उनकी आने वाली फिल्म वाइब, उसमें उनके कैरेक्टर्स की बातचीत में वो फेमिलियरिटी है, वो फीलिंग है कि ये लोग किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बोल रहे, ये लोग तो वैसे ही बात करते हैं। और अब उसी एनर्जी को कुणाल खेमू थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 9 पर डेब्यू कर रहा है वाइब का टाइटल ट्रैक कंफ्यूजन, इरफाना हमीद और शुभम सुपन खिलरी की आवाज में। दिस इज ऐसी मेरी वाइब। नंबर 9।

0: अलग ये लाइफ, अलग ये स्टाइल, अलग ये हाइट, मेरी अलग ये वाइब, अलग ये लाइफ, अलग ये स्टाइल, अलग ये हाइट, मेरी अलग ये वाइब, अलग ये लाइफ।
1: नंबर 8।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर टू

0: नंबर दो पर आते ही एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है। एक तरफ वो फिल्म है जिसे रणवीर सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ नंबर वन पर फिर से वही गाना है जो एक ऐसी फिल्म से आया है जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वो इमरान हाशमी के करियर की टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट आवारापन। इमरान का जो अर्ली करियर था ना, वो काफी इंटरेस्टिंग था। फिल्में चल रही थी, गाने भी चल रहे थे, ऑडियंसेस भी आ रही थी, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उन्हें इमरान हाशमी में एक्टर से ज्यादा एक इमेज नजर आती थी। किसिंग सीन्स आए तो सीरियल किसर का टैग लग गया, लेकिन फिर आई आवारापन। देखो फिल्म नहीं चली ये सब जानते हैं, लेकिन इमरान के लिए कुछ बदल गया। उन्होंने पहली बार अपने आप को उस इमेज से बाहर देखना शुरू किया, और वो खुद इस जर्नी को कुछ इस तरह याद करते हैं।
1: मेरा कभी नहीं था कि मुझे क्रिटिक्स को अपीज करना है, मुझ में कहीं एक चाह थी कि यार अभी बस हो गया, ये प्रोड्यूसर्स को ज्यादा ही दे हैव एक्सप्लॉइटेड द फैक्ट दैट देयर इज इमेज। एंड हाँ, फिल्में चल रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिल रही है, बट फ्रॉम इनसाइड आई यू नो लाइक इट सो इट वाज लाइक अ फायर टू काइंड ऑफ आल्सो एक्सप्लोर अनदर फैसेट ऑफ एक्टिंग जहाँ तक कैरेक्टराइजेशन हो। एंड देन थैंकफुली वी स्टम्बल्ड अपॉन दिस व्हिच टच्ड अपॉन सम रियली सेंसिटिव थिंग्स, यू नो, लूजिंग समवन यू लव। So a very painful moments and it kind of satiated me as an actor.
0: यार कभी-कभी एक्टर को करियर बदलने के लिए ब्लॉकबस्टर नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ एक ऐसी फिल्म चाहिए होती है जो उन्हें ये प्रूव कर दे कि वो और भी कुछ कर सकते हैं। एंड आवारापन ने इमरान में वो जज्बात जगाए। उसके बाद डायरेक्टर्स आए, कैरेक्टर्स आए, और धीरे धीरे वो एक्टर भी सामने आया जो उस इमेज के पीछे छुपा हुआ था। और शायद इसलिए आज जब दुनिया आवारापन को सेलिब्रेट कर रही है बॉक्स ऑफिस के लिए, नोस्टैल्जिया के लिए, इमरान हाशमी के कमबैक के लिए, तो मुझे इस फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये लगती है कि इसने इमरान हाशमी के पूरे इमेज को तोड़ दिया और बदलने का मौका दिया। एंड इजंट दैट व्हाट ग्रेट सिनेमा इज। फिल्म्स कभी कभी एक्टर को स्टार नहीं बनाती है, कभी कभी एक्टर को खुद से आगे जाने की परमिशन देती है। नंबर वन पर फिर से द रिलेशनशिप कंटिन्यूज। दिस इज तेरा मेरा रिश्ता।
2: नंबर वन।

0: कुछ गाने खत्म हो जाते हैं, साथ में कुछ कहानियां, लेकिन कुछ आवाजें वो कहीं नहीं जाती। आज की कहानी मैं यही खत्म कर रहा हूँ। गाने चलते रहेंगे, यादें भी बनती रहेंगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन द मिर्ची टॉक 20, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: ना तो हीरो के बारे में है ना ही हीरोइन। दिस इज द शो जहां मेन कैरेक्टर इज गुड म्यूजिक एंड गुड म्यूजिक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो जहां पे हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है। हम अपना 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक करेंगे, सम स्पेशल गाना शाउट आउट्स, ऑल दैट एंड मोर। तो सीधा शुरुआत करते हैं इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10। संजू राठौड़ की कॉम्पोजिशन, जी पार्क का प्रोडक्शन, संजू राठौड़ की आवाज में। गाने का नाम है बैंगल्स। 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार रहा ये गाना बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद राघव कौशिक की आवाज रेखा भारद्वाज के साथ, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है दरमिया, दिस इज द लव सॉन्ग ऑफ द सीजन। मुसाफिर कैफे ओटीटी शो से है ये। पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक, बैंगल्स ऑन नंबर 10 देन दरमिया ऑन गाना नंबर 9, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज, राघव कौशिक का म्यूजिक, अमृता सलूजा के लिरिक्स, गाने का नाम है दरमिया, मुसाफिर कैफे से है ये गाना, द लव सॉन्ग ऑफ द सीजन, पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. The show is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram pe jao. Mera handle is @RJKanika. Matlab mera naam to mummy ne Kanika hi rakha. Pichle 7 saal se I'm bringing these top 10 songs of the week for you. And tab se RJ Kanika. It's quite odd, pata hai. Bahut log mujhe jo sirf Instagram se jante hain, jab milte hain, to hi RJ Kanika bolte hain. And you don't even realize ki wo tumhari pehchan ban jati hai. It's not a bad thing, you know. Everybody wants that takeaway factor with their art, right? Gaana number 9 par humne Darmiyan suna Rekha Bharadwaj ji ki awaaz mein. Jis bhi gaane mein Rekha ji ki awaaz hoti hai, wo ek second ka gaana sunte hi hum samajh jaate hain ki are ye to Rekha Bharadwaj ji hain. Such strong is her voice, her identity. सोचने वाली बात है, इतने गाने आते हैं, इतने गाने जाते हैं, गाने सोशल मीडिया ट्रेंड्स बन जाते हैं, लोग कुछ हफ्ते सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, पर कुछ गाने और कुछ आर्टिस्ट की आवाज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं। इसे ही हम वो टेक अवे फैक्टर कहते हैं। वो आर्टिस्ट की आवाज़ हो सकती है, जैसे रेखा भारद्वाज जी की आवाज़ है, AR रहमान जी की आवाज़ है, सुनते ही पता चल जाता है कौन है, या फिर वो एक कंपोजर की ब्रिलियंस हो सकती है जो वो गाने में एक इंस्ट्रूमेंटल पीस या सोलो के साथ या किसी गिटार सोलो से इंट्रोड्यूस करें। इतने सारे आइकॉनिक गाने हैं जिनकी गिटार सोलोज या इंट्रो म्यूजिक को सुनते ही हमें पता है कि कौन सा गाना है, जैसे कि दिस वन। मैंने गाने का नाम नहीं बताया, गाने की पहली लाइन नहीं आई, आपने सिंगर्स को नहीं सुना, एंड यू नो इट्स साथिया का म्यूजिक। एट RJ Kanika इंस्टाग्राम पर आओ, मैं आपको एक 90s के इंडी पॉप क्लासिक का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ, आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है। RJ Kanika इंस्टाग्राम पर आके मुझे बताओ ये कौन सा गाना है। काउंटडाउन पर आगे चल के हमारे कसर क्लासिक में ये पूरा गाना आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। अभी काउंटडाउन पर आगे बढ़ते हैं। अगले वाला गाना इज अ नई नवेली एंट्री। इस गाने को छोटे बच्चे गा रहे हैं, कॉलेज वाले लोग रील्स बना रहे हैं, और कुछ नहीं तो मैं और आप इसको ऐसा एटीट्यूड स्टार्टर लाइन की तरह बोल रहे हैं। गाने का नाम है बूम शाकालाका बाय धंधा न्योलेवाला एंड कृष्णा। फिनोमेन हिसाब का प्रोडक्शन। बूम शाकालाका इज अ नई नवेली एंट्री डेब्यूइंग सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 8।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 7
1: हाउ चुप

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी एंड दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनी की कॉम्पोजिशन, हर्ष का म्यूजिक, गाने का नाम है साड़ी सुन। दिस सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव। 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार है ये गाना, पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: You are listening to Gaana Indie Top 10. Badi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao, mera handle is @RJKanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. I truly believe gaane share karne se pyar badhta hai. Is show ke zariye jo gaane aap mere saath recommend karte ho aur gaano ke saath saath jo aap apne experience, kahaniyan, puri gossip bata dete ho na ki yaar tab hua tha aur ye gaane ne ye kiya tha. सबसे पहले तो कस के थैंक यू। मैं और मेरा साउंड प्रोड्यूसर अश्काय, वी रियली लुक फॉरवर्ड टू ऑल योर रिकमेंडेशंस। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। ये वो गाने हैं जो ना तो पुराने साउंड करते हैं और ना ही नए हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज And the song we're going to feature this week is
2: डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी।
0: गाने का नाम है डूबा डूबा बाय द सिल्क रूट, मोहित चौहान की आवाज में। ये गाना 1998 में रिलीज हुआ था, सिल्क रूट की डेब्यू एल्बम बूंदे का पार्ट था। आई थिंक आई कैन नेवर गेट इनफ ऑफ दिस सॉन्ग। 1998 का वो दौर था जब पॉप म्यूजिक का मतलब बिल्कुल भी फिल्म जैसा म्यूजिक बनाना नहीं था, बल्कि ये गाना अपने आप में ही एक दुनिया थी, अपने आप में ही एक फिल्म थी। एंड समटाइम्स आई थिंक कि क्या तब सिल्क रूट को इस बात का कोई भी अंदाजा था कि वो हमें एक ऐसा गाना दे जाएंगे जो पूरे 30 साल बाद भी हम इतनी ही इंटेंसिटी के साथ सुनते हैं। आज भी इस गाने को सुन के एकदम मन करता है कि मैं पहाड़ों पे चली जाऊं, कि शाम का वक्त है, सूरज अभी ढला ही है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है बट रोशनी भी है, पास में एक नदी बह रही है, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, चाहे जगह असली हो या ना हो, बट दिस फीलिंग एंड दिस सॉन्ग ऑलवेज इमोट्स दिस। कुछ गाने भी तो हमारी जिंदगी में मेमोरी का टिकट होते हैं, दे टेक अस बैक टू दैट ओल्ड प्लेस, कोई भूला हुआ दिन, कोई दबी हुई मेमोरी। एंड दिस सॉन्ग बाय मोहित चौहान एंड सिल्क रूट इज एग्जैक्टली दैट। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए एंड चलो उस नदी के किनारे जब ढलती हुई शाम में मोहित चौहान की आवाज में सिल्क रूट का गाना डूबा डूबा आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

मैन ओ मैन द सॉन्ग जस्ट गेट्स बेटर विद एवरी ईयर. मोहित चौहान की आवाज में दैट वॉज डूबा डूबा ऑन आर कैसेट क्लासिक दिस वीक. इस सेगमेंट के बाद मुझे सब अच्छा अच्छा लगने लगता है. जैसे आई हैव गॉन बैक टू द सिंपल टाइम जब हमारे पास सिर्फ वक्त ही वक्त था वक्त बर्बाद करने का, और वक्त बर्बाद करने का कोई गिल्ट नहीं था. एट आरजे करेंगे और इंस्टाग्राम पर आगे मुझे बताओ 90s 2000s के कौन से आइकॉनिक इंडी पॉप गाने हैं जिनको जब आप आज सुनते हो सो यू आर टेकन बैक टू दोस सिंपलर टाइम्स. आई एम नॉट दैट ओल्ड बट आई एम एन ओल्ड सोल. लेकिन मैं बात तो ऐसे करती हूँ, ओहो पुराने दिन सिंपल टाइम्स, बट इट इज ट्रू. But then there are some songs, आज के आर्टिस्ट contemporary music जो ऐसे गाने बना रहे हैं जो हमारी complicated life को simple कर देते हैं. And Farak is exactly one of those artists. Countdown का अगले वाला गाना written and composed by Farak, गाने का नाम है तारे. 7 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 2 पोजिशन ऊपर जम करके तारे is playing right next for you on गाना number 6. You are listening to Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका. Enjoy. Number 6.

0: के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।
1: गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है।

गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 5

0: अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी। 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है उड़ी उड़ी। दिस वीक ऑन गाना नंबर 5।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जिनको सुन के आपका दिल अनलॉक हो जाता है। दे साउंड लाइक फ्रीडम। मन करता है कि गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलूं, दोनों हाथ फैलाऊं और चिल्लाऊं, मजे करूं, नाचूं। They put you in a groove, they put you in a good mood. And there are some incredible independent songs. जैसे चाल में मस्ती ला देते हैं, जो हमारे दिल को अनलॉक कर देते हैं, which sound like freedom. And I'm going to talk about one such song. It's one of the most celebrated collabs of last 10 years. I'm talking about Divine and Raja Kumari ka City Slums. Run and tell your mommy. ये गाना 2017 में आया था एंड व्हाट अ वंडरफुल कोलिजन ऑफ टू वर्ड्स। एक तरफ राजा कुमारी, एलए बेस्ड पॉप सिंगर सॉन्ग राइटर, मीट्स मुंबई के अपने गली रैपर डिवाइन। एज इट साउंड्स लाइक अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग, राइट? बिकॉज हम इस तरह के कोलैबोरेशंस देखते रहते हैं, इंटरनेशनल एंड इंडियन आर्टिस्ट के बीच में देखते हैं, बट दिस कोलैब इन 2017 मेंट सच अ बिग डील। राजा कुमारी कैलिफोर्निया बेस्ड, वो ऑलरेडी बहुत बड़े अमेरिकन आर्टिस्ट के लिए गाने लिख चुकी थी, उनके साथ कोलैबोरेट कर चुकी थी, एंड उनका तेज सरार English flow with Divine sounds incredible, like a beautiful cocktail in the song. Why I love listening to this song is that ye gana na humko humari identity se bahut close feel karwata hai. It makes you feel good about yourself. It makes you feel good about where you belong to. तो अपने रेडियो के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। राजा कुमारी एंड डिवाइन का गाना, गाने का नाम है सिटी स्लम्स। इट्स गॉट एन ईयर वॉर्म हुक एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

So don't misunderstand.

0: इनक्रेडिबल म्यूजिक डुओ फ्रॉम कुरुक्षेत्र बंजारे का गाना, गाने का नाम है बरसात। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बरसात वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। टॉप 10 पॉप गानों की गिनती हम आपके लिए लेकर आते हैं। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना सजेस्ट करना हो, कोई बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी। अब आधे से ज्यादा टाइम तो आप गाना सुन लेते हो, गाने का नाम भूल जाते हो और फिर मुझे मैसेज करते हो कि गाना नंबर 4 पे कौन सा गाना बोला था। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, आपके लिए जो गाने का नाम भूल जाते हो, लेट्स डू अ क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर दिस वीक वॉज संजू राठौर का बैंगल्स। राघव कौशिक रेखा भारद्वाज का दरमिया दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
2: तेरे मेरे दरमिया।
0: उसके बाद गाना नंबर 8 पर नई नवेली एंट्री, कृष्णा धंधानियोली वाला का बूम शाकला का डेब्यूज ऑन गाना नंबर 8।
3: बूम शाकला का, बूम शाकला का, दिला दे बूम शाकला का।
0: हर्ष नसीदीप क्लेयर का साडी सुन ऑन गाना नंबर 7। फरक का तारे स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। दिस ब्यूटिफुल फोक पॉप सॉन्ग्स बाय अनीश सरकार हृदय उड़ी उड़ी दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। बंजारे का बैरन था दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। डबल वैमी बाय बंजारे, उन्हीं का गाना बरसात हमने सुना ऑन गाना नंबर 3।
4: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा चाहेगी।
0: एंड द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, बादशाह शर्वी यादव हितेन का गाना, गाने का नाम है बैंगर। 3 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, ये गाना पिछले हफ्ते से 1 नहीं 2 नहीं पूरा 3 पोजीशन ऊपर जंप करके बादशाह का बैंगर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद मेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार है ये गाना, टिका हुआ है 3 हफ्तों से ऑन गाना नंबर 1, 25 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। मिट्टा रॉर की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा, Yet again on Gaana number 1. ये दोनों गाने back to back, banger on number 2, शीशा on number 1, only on Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है कनिका, enjoy.

या भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

0: Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot.
1: तो ले का कंगना मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा

साथ है। आज है।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी। और रेडियो मिर्ची के साथ
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिस्सला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर तुम्हारी आंखें खुल गई हैं तो कांग्रेचुलेशंस, अभी जो है दिन ऑफिशियली तुम्हारी रिस्पांसिबिलिटी बन चुका है और तुम अकेले नहीं इस दिन को मिर्चीदार बनाने वाले हो। मैं बोलूं तो प्रिस्सला तुम्हारे साथ हूँ। मिर्ची मॉर्निंग्स अभी अभी शुरू हुआ है, यहाँ पर चाहे इमेजिनरी हो सकती है तुम्हारे मेरे बीच में, लेकिन एनर्जी जो है, वाइब जो है वो बिल्कुल रियल है। और मंडे हो, ट्यूजडे हो या फ्राइडे हो, मैं और तुम मिलकर दिन को मिर्चीदार बना ही लेते हैं हर रोज। मेरा आज का लाइफ का फंडा पता क्या है? लाइफ में सब कुछ टेम्पररी है एक्सेप्ट फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशंस। सो अभी वेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, गेटिंग द किड्स रेडी फॉर स्कूल, प्रिटेंडिंग टू वर्क फ्रॉम होम या फिर एक्चुअली वर्किंग, आई हैव गॉट योर बैक। अगले कुछ घंटों तक मैं तुम्हारे साथ में रहने वाली हूँ। यहाँ पर मिलेगा तुमको बॉलीवुड, देसी वाइब्स, मिर्चीदार तड़का, काफी सारा गॉसिप, मस्ती, म्यूजिक एंड अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, और वो कॉन्वर्सेशन जो सुबह सुबह तुम्हें बोलने और सोचने पर मजबूर कर दे। अब मुझे बताओ तुम्हारी मॉर्निंग का मूड आज क्या है? इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, MIRCHIPRI। Yes, do follow me there. और WhatsApp कर सकते हो मुझे 9033 मिर्ची पर, 9033647244 पर। तो वॉल्यूम को बढ़ा लो, मिर्ची का थोड़ा सा वाइब चढ़ा लो और सुनते जाओ मुझे। Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम करने वाले हैं थोड़ी सी टाइम ट्रैवलिंग। सबसे पहले चलते हैं 1776 में अमेरिकन रेवोल्यूशनरी सोल्जर नेटन हेल को न्यूयॉर्क में ब्रिटिश ने स्पाई के चार्ज में हैंग कर दिया। उनके फेमस लास्ट वर्ड्स थे, आई रिग्रेट दैट आई हैव बट वन लाइफ टू लूज फॉर माई कंट्री। भाई व्हाट अ माइक ड्रॉप मोमेंट। 1862 में इब्राहिम लिंकन ने प्रिलिमिनरी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशू की, वार्निंग दैट एनस्लेव्ड पीपल इन कॉन्फेडरेट स्टेट्स वुड बी फ्रीड इफ दोज स्टेट्स डिडंट रिटर्न टू द यूनियन। 1914 में इंडिया का कनेक्शन, जर्मन क्रूजर SMS एम्डन ने वर्ल्ड वॉर वन के दौरान मद्रास यानी कि आज का चेन्नई के हार्बर पर शेलिंग की। इमेजिन चेन्नई की मॉर्निंग विद फिल्टर कॉपी और अचानक से हिस्ट्री का ये नोटिफिकेशन आ गया। 1975 में सर जेन मूर ने प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड को सैन फ्रांसिस्को में शूट करने की कोशिश की लेकिन मिस्ड। 1980 में इराक ने ईरान इन्वेड किया, बिगिनिंग एन 8-year वॉर दैट कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल्टीज। आज का हिस्ट्री का लेसन खत्म होता है मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे, मुझे बताओ व्हाई डू यू लव हिस्ट्री। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग माय मिर्ची पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। नाउ लेट्स चेक योर मिर्ची मॉर्निंग्स पर वेदर रिपोर्ट। अभी एडिसन में टेम्परेचर है 57 डिग्री फारेनहाइट, स्काइज जो है वो थोड़ी सी क्लाउडी और विंड की वजह से फील हो रहा है अराउंड 54 डिग्री फारेनहाइट, यानी कि एक लाइट जैकेट जो है आज उसे साथ में ले जाना बिल्कुल मत भूलना। डे टाइम में क्लाउड्स के साथ साथ हल्की सी बरसात, थोड़ा सा शावर एक्सपेक्टेड है। टेम्परेचर जाएगा अप टू 67 डिग्री फारेनहाइट, लेकिन फील हो सकता है 65 डिग्री के आसपास। रेन का चांस है 26% और अगले 24 आवर्स में अराउंड 1 मिलीमीटर से भी कम थोड़ी सी बरसात हो सकती है। रात को टेम्परेचर डिप करेगा अराउंड 54 डिग्री फारेनहाइट तक विथ अबाउट 10% चांस ऑफ रेन। विंड्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट से अराउंड 9 to 10 miles per hour आ रही है और ह्यूमिडिटी जो है वो 72 to 79% है। बेसिकली आज तुम्हारे बाल जो है वो अपने मन की करने वाले हैं। कल के कंपैरिजन में आज थोड़ा सा कोल्डर है। कल का हाई था 73 डिग्रीज फारेनहाइट और आज है 67 डिग्रीज फारेनहाइट। सो देसी रूल ऑफ द डे, अम्ब्रेला को साथ में कैरी करो बिकॉज इट कुड रेन। वेयर अ लाइट जैकेट, जिसे कभी उतारना पड़ा तो लेयर के प्लेयर बन के उतार भी सकते हो। और साथ साथ में चाय को अपना इमोशनल सपोर्ट बनाओ बिकॉज यू वुड नीड दैट चाय टुडे। एंड ऑफ कोर्स कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, वेयर योर सन प्रोटेक्शन विद एसपीएफ 50++++। एंड ऑफ कोर्स मिर्चीदार वाइब्स बनाए रखो। मुझे यानी कि प्रिसिला को फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। और व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। कमिंग अप मिर्चीदार बैंगर्स फॉर यू, एकदम गर्मा गर्म है। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
1: Mirchi, it's hot.

तीन खबरें अराउंड द वर्ल्ड से मिर्ची मॉर्निंग्स पर. मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में. सबसे पहले इंडिया पुश फॉर परमानेंट सीट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड चेक रिपब्लिक यानी कि वाइस गार्ड फोर का बैकिंग मिल चुका है. स्लोवाकिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को अपकमिंग सुपर पावर कहा है और बोला है इंडिया को परमानेंट मेंबर के तौर पर टेबल पर होना चाहिए. ये सपोर्ट न्यूयॉर्क में V4 इंडिया मीटिंग के दौरान आया है. नंबर टू पर इंडिया के बिहार के जमुई से एक डिस्टर्बिंग अपडेट आई है. कोचिंग से घर लौट रहे एक टीनेज बॉय और गर्ल को कुछ लोगों ने रोका, असॉल्ट और मोलेस्टेशन किया. केस में पुलिस ने मेन अक्यूज्ड नंदन यादव को एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया है. पुलिस के मुताबिक उसके लेग में गोली लगी है. इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट की टोटल नंबर 5 बताई जा रही है. एंड लास्टली क्रिकेट फैंस, जहीर खान इज द न्यू हेड कोच ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स फॉर IPL 2027. ही टेक्स ओवर फ्रॉम स्टीवन फ्लेमिंग, ending Fleming's long CSK coaching run. Zaheer was previously a mentor with Lucknow Super Giants. And that's it for Mirchi Hour ka 3. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Follow karo mujhe Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. Aur WhatsApp karo 9033 Mirchi par. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot. Pam pa ra ra ra ram.

98.3 98.3 Mirchi. It's hot.

0: Priscilla with you on Mirchi Mornings. और आप थोड़े से देसी स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं.
1: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट.
0: एशियन गेम्स 2026 में इंडिया का मेडल टैली जो है ऑफिशियली 7 पर पहुंच चुका है. 1 gold, 4 silver, or 2 bronze अब तक इंडियंस ने कमा लिए हैं. और पहला गोल्ड जो है वो आया है हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम से. फाइनल में श्रीलंका को इंडिया ने 147 रन से हरा दिया और टाइटल भी रिटेन कर लिया है. इंडिया ने पहले बैटिंग करके 216 रन बनाए फॉर 3 wickets. स्मृति मंदाना ने 79 रन बनाए और 45 बॉल्स. ऋचा घोष ने अनबीटन 49 रन्स बनाए ऑफ 22 बॉल्स. मतलब कि ऋचा ने कहा है भाई फाइनल है तो थोड़ा सा फायरवर्क्स के साथ बैटिंग करना बनता है. श्रीलंका की टीम 69 पर ऑल आउट हो गई और दीप्ति शर्मा ने 3 wickets लेकर बॉलिंग डिपार्टमेंट पूरा का पूरा संभाल लिया था. अब बाकी के 6 medals जो है उनमें से 4 silver और 2 bronze हैं. शूटिंग से 5 medals आए हैं और एमएमए में सुचिका टरियाल का हिस्टोरिक ब्रॉन्ज आया है. तो स्कोर बोर्ड जो है वो काफी सिंपल है. इंडिया हैज 7 medals एंड द गोल्डन अकाउंट इज ऑफिशियली ओपन. मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूं मिर्ची मॉर्निंग्स. फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. और हाँ, व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 647244. अबे मिर्ची दार बैंगर्स का टाइम है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: अकड़ी पकड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिका दिक्कड़ी दिक्क दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कड़ी दिक्कीरो दिक्कीरो

हेलो हेलो, मैं हूँ प्रसन्ना, तुम्हारे साथ में सुन रही थी मर्जी मॉर्निंग्स एंड ऑल माय बर्थडे बेबीज आउट देयर। आज का दिन ऑफिशियली तुम्हारा तो है, लेकिन आज के दिन कैलोरीज काउंट नहीं होती और विश जो है वो कंपलसरी होता है, और केक का सेकंड पीस जो है वो ऑब्वियसली नेसेसरी होता है। आज सितंबर 22 को बॉर्न हुए लोगों की लिस्ट जो है वो काफी इंटरेस्टिंग भी है। तुम्हारे अलावा म्यूजिक साइड पर वीव गॉट जोन जेट, एंड्रिया बचेली, निक केव और व्हाइट स्नेक, वेल, डेविड कवरडेल, और के पॉप फैंस तुम्हारे लिए ट्वाइस की नायू और स्ट्रे किड्स की संगमिन, आज वो दोनों भी बर्थडे स्क्वाड में शामिल है। हॉलीवुड से वी गॉट टॉम फेल्टन, यस ड्रेको मैलफॉय हिमसेल्फ, देन वी गॉट बिली पाइपर और कॉमेडियन एक्ट्रेस बॉनी हंट, ये सभी आज ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे देसी बर्थडे गैंग में बॉलीवुड एक्ट्रेस रंजीता कौर, एक्ट्रेसेस शांति प्रिया एंड सना सईद, एंड साथ साथ में सिंगर होस्ट रिमी टोमी, फॉर्मर क्रिकेटर अंबाटी रायडू और सिक्किम के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पवन कुमार शामलिंग, ये सब शामिल हैं। तो अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, तुम्हारा ईयर जो है ब्लॉकबस्टर हो, बैंक बैलेंस जो है वो सपोर्टिंग एक्टर नहीं बल्कि लीड रोल में आकर मेन कैरेक्टर एनर्जी दिखाने लग जाए, और मैं वो प्रिसला तुम्हारे साथ में फिलहाल बर्थडे विश किया तुम्हें मिर्ची मॉर्निंग्स पर। यू कैन सेंड मी योर शाउट आउट, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हो, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। फिलहाल के लिए चिपक बैठो यहीं पर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मैं तो थक गई भाई साहब, इसलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। मेरा नाम है प्रिसिला, तुम सुनने वाले हो मिर्ची मॉर्निंग्स पर गोल्ड रेट अपडेट।
1: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at 4290, 4290 डॉलर पर ट्राई ऑन्स के साथ गोल्ड के प्राइजेस आज ट्रेड कर रहे हैं। आइए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी हो, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें और 0% इंटरेस्ट पे, जीरो डाउन पेमेंट के साथ स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें ज्वेलरी अप्रूव होने पे आज घर आपके साथ जा सकती है और 9 इंस्टॉलमेंट्स में बिना किसी इंटरेस्ट के आप पे कर सकते हैं। आइए राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिवली। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

All right, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में. Welcome to the last hour of मिर्ची mornings. और अब top 3 updates from around the world. सबसे पहले अमेरिका में मीडिया सीन काफी इंटरेस्टिंग हो गया है. व्हाइट हाउस ने लॉन्च किया ट्रंप टीवी द एसेंशियल स्टेशन. ये 24/7 वीडियो स्ट्रीम फीचरिंग प्रेसिडेंट ट्रंप स्पीचेस, एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंसमेंट्स एंड पास्ट फुटेज. दिस कम्स आफ्टर द व्हाइट हाउस बैंड CNN, MS Now एंड Politico from its premises after Trump accused the outlet of fake news. Major TV networks then suspended their shared White House poll coverage. Number 2 par India mein skies are getting busy. Jodhpur mein Tarang Shakti air exercise September 26th se lekar October 12th tak hone wali hai. US ka F-35, France ka Rafale, UAE ka F-16 aur India ke Rafale, Tejas, Mirage 2000, Jaguar aur Sukhoi 30 jaise aircraft participate करेंगे. मतलब कि जोधपुर में इस बार गर्मी के साथ साथ इंजन की आवाज भी फुल वॉल्यूम पर होने वाली है. एंड लास्टली क्रिकेट से, इंडिया बीट जापान बाय जस्ट 2 रन्स इन अ हिस्टोरिक वन ऑफ T20I. रेन की वजह से मैच सिर्फ 5 ओवर्स असाइड हुआ. इंडिया में 32/4 एंड जापान रीच्ड 30/3. And the final over decided everything. Basically, 5 overs, but full 3-hour ka drama. And that's it for Mirchi Hour ka 3. Main hoon Prisila, tumhare saath mein quick news updates from around the world tumhe diya. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. And WhatsApp par mera number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: आज के स्टार्स क्या बोल रहे हैं ये जानने का टाइम आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर. दिस इज प्रिसला विद यू.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: इट इज यानी कि मेष राशि, आज पेशेंस रखो बॉस. किसी को टाइम चाहिए तो उन्हें रश मत करो. हर चीज का आंसर अभी ही इसी सेकंड नहीं होता है. रिलेशनशिप में थोड़ा सा पॉज का बटन दबाने का टाइम आ चुका है. लकी कलर इज कोरल. लकी नंबर इज 6. टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज रोमांस और पर्सनल मैटर्स में स्टेबिलिटी का वाइब है. जो डाउट्स रिसेंटली माइंड में रेंट फ्री रह रहे हैं उनको थोड़ा सा एविक्शन नोटिस मिल सकता है आज. लकी कलर इज सेज ग्रीन. लकी नंबर इज 4. जेमिनी यानी मिथुन राशि, सीरियस कॉन्वर्सेशन से बचने के लिए जोक मारना आज काम नहीं करने वाला है. जो कमिटमेंट या रिलेशनशिप टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको डायरेक्टली एड्रेस करो. कभी कभी LOL के पीछे फीलिंग्स हाइड नहीं होती है बेटा. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 11. कैंसर यानी कर्क राशि, आज सॉफ्टनेस इज योर सुपर पावर. क्लियर कम्युनिकेशन रखो, स्पेशली घर या प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रैक्टिकल मैटर्स में. दिल भी संभालो, पेपर वर्क भी संभालो, दोनों कर लोगे. लकी कलर फॉर यू इज ऑफ व्हाइट. लकी नंबर इज 2. लियो यानी कि सिंह राशि, मनी मैटर्स में डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स केयरफुली चेक करो और बजट से बाहर हीरो बनने की ज्यादा जरूरत है नहीं. फाइनेंशियल ग्लो अप पेशेंस से आएगा, रिलैक्स. लकी कलर इज मेरी गोल्ड. लकी नंबर इज 9. वर्गो यानी कन्या राशि, फैमिली के साथ सपोर्टिव मोमेंट्स मिल सकते हैं और रिलायबल जेनरस एक्शन से फाइनेंशियल गेन्स का भी चांस है. बेसिकली गुड कार्मा का कैशबैक मिल रहा है अब तुम्हें. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 7. अब ये याद रखो, स्टार्स सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे ही हाथ में है. मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, ये है मिर्ची मॉर्निंग्स. फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ओके राशिज ओन पार्ट टू वाले गैदर अराउंड, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी कि तुला राशि, एनर्जी हाई रहने वाली है, सोशल प्लान्स प्रोजेक्ट सब कुछ, बट पीस मेंटेन करने के चक्कर में अपनी कंफर्ट सैक्रिफाइस मत कर देना। नो भी एक कंप्लीट सेंटेंस होता है डार्लिंग। लकी कलर इज रास्पबेरी, लकी नंबर इज 5। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, लीगल या प्रॉपर्टी मैटर्स में बिना पूरी इन्वेस्टिगेशन के जंप मत करो और रिलेशनशिप में साइलेंट लॉयल्टी को वैल्यू करो। ट्रस्ट कभी कभी लाउड वर्ड्स से नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एक्शन से बनता है। लकी कलर इज डीप टील, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज एक स्वीट मैसेज, क्रिएटिव आइडिया या अनएक्सपेक्टेड इनविटेशन मूड ब्राइटन कर सकता है। बस फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेट पर ले जाना। ओके लकी कलर फॉर यू इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 3। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, लॉन्ग टर्म गोल के लिए फ्रेश मोटिवेशन मिलेगी, सो व्हाई वेट। प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ एक सॉलिड स्टेप आज ही ले लो। Future you might actually send you a thank you note. Lucky color for you is charcoal blue. Lucky number is 10. Aquarius yani kumbh rashi, slow and steady is your vibe today. Time or resources protect karo aur emotional healing ko space do. Har feeling ka forensic analysis karna zaruri nahi hota bhai. Lucky color is mint green. Lucky number is 1. And last but not the least, Pisces yani ki mean rashi, heart ki intuition ko listen karo, especially sincere conversations mein. Bas एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो, इमेजिनेशन बॉलीवुड लेवल की हो सकती है, रियलिटी पर उतरना पड़ेगा, थोड़ा सा स्क्रीन प्ले सिंपल करना पड़ेगा। लकी कलर फॉर यू इज सॉफ्ट गोल्ड, लकी नंबर इज 12। दैट्स योर राशि ज़ोन पार्ट टू, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, मुझसे जुड़ो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

जस्ट लाइक दैट दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स का कर्टन कॉल. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, लेकिन जाने से पहले एक फिल्मी अपडेट देना तो बनता है. आज गुजरात के एकता नगर में 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स हुए और आर्टिकल 370 टुक होम बेस्ट फीचर फिल्म, व्हाइल यमी गौतम वन बेस्ट एक्ट्रेस, मामूजी एंड कार्तिक आर्यन शेयर्ड द बेस्ट एक्टर का अवार्ड. और आदित्य धार दुरंधर को इंडिया की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री नहीं मिल पाई, लेकिन नेशनल अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर उन्होंने कहा कि होपफुली अगर दुरंधर क्वालिफाई करे तो नेक्स्ट ईयर वापस आ जाएंगे. बेसिकली उनका कहना था पिक्चर अभी बाकी है मेरे ऑडियंस. और वैसे अब तुम्हारा मॉर्निंग का साउंड ट्रैक भी बाकी है मेरे दोस्त. थोड़ा सा दिल पर पत्थर रखकर ही मेरे बिना प्लेलिस्ट सुनना आगे का, क्योंकि अब मुझे तो जाना पड़ेगा. एंड दिस वॉज मिर्ची मॉर्निंग फ्रॉम माई साइड. मैं बोले तो प्रिसिला तुमसे टाटा बाय बाय अलविदा शब्बा खैर कह रही हूँ. फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस. और कभी कभी हेलो भी बोल दिया करो यार, व्हाट्सएप पर एक आध मैसेज भी ड्रॉप करो, तो बिना कॉन्टेस्ट के भी कर सकते हो. 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244. ड्राइव सेफ, स्माइल मोर, और याद रखो सुबह सुबह की चाय और मिर्ची मॉर्निंग्स दोनों एकदम मिर्चीदार होनी चाहिए. टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है। ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के रहूंगी।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइंस पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से। मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीजों के, तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था, थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। देखा, लगा ना, वाकई में लगा ना। मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं, अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था। तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को, और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी और मैं जब भी देखती थी ना देख देख कर उछल जाया करती थी। तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नहीं, मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखनी है। नहीं नहीं, इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी एज किड। ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया। एंड वेल, ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म, ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी ये सब थे और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी। और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉलआउट हुआ था। हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया और जो पोस्टर बना चाइना गेट का उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई ना कि ममता कुलकर्णी की। हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा। लेकिन ऑनेस्टली आई मीन पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: खनखना

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया। बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और सही जवाब है चाइना गेट। मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है। एक तो ये डायलॉग, एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं। अगला इंसान कहता है नौने पौ। I still use this dialogue in my life. अगर पौने नौ बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं नौने पौ ही बोलती हूँ, पौने नौ नहीं बोलती। लेकिन कमिंग बैक टू चाइना गेट, हाँ ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल। हाँ, और किया भी क्यों ना जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे, एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा। इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग। सर्दियों में हम भी यही करते हैं। हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शावर नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। डीडी वन पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गए यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छिड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ये वो गाना है जो आपको ऑफिस में वायरल कर सकता है. मोहित चौहान ने गाया इतनी मस्ती में ना इस गाने को, आई स्वेयर. यू नो व्हाई आपको वायरल कर सकता है? क्योंकि अगर इस गाने को आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो ना, तो आप आसपास की दुनिया जो है ना उसको तो भूल ही जाओगे, और फिर आसपास की दुनिया को भूलने के बाद जो आप अपने आप में खो जाओगे और नाचते हुए नजर आओगे और अजीब अजीब सी आप क्रियाएं करते हुए नजर आओगे ना, तो ऑफकोर्स वायरल होना तो बनता है ना बॉस. ये गाना ही वही है जो आपको दुनिया भुला देता है, आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो है वो भुला देता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की ताल पर नहीं, इस गाने की ताल पर नचा देता है.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और हम जो म्यूजिक के इतने दीवाने हैं मेरे यारा, वही तो आ जाते हैं रोज रोज ये कहने के लिए

मान ना मान करो गानों की पहचान। अब सिंस मुझे पता ही है कि आप म्यूजिक के इतने फैन हो और म्यूजिक आपके लिए थेरेपी है, तो यहीं पर मैं एक दाव खेल जाती हूँ और रोज आपके लिए एक सवाल गाने की सूरत में चलाती हूँ और दो गानों की धुनों को मिक्स करके आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार ये दोनों गाने कौन से हैं। तो आज की जो दो धुनों का मिक्स है वो है कुछ यूं। गिव इट अ लिसन।

बस जी, अब आपको डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दो कौन से गाने हैं जो अभी आपने सुने। मिर्ची सारा इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, याद रखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

स्टेशन तेरे मेरे दो दिलों की मंजिल तो है लव स्टेशन। सबसे पहले आई हूँ करने दिल का रिजर्वेशन, तू जो चाहे ले ले मेरे दिल का एग्जामिनेशन।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आई एम नॉट टू श्योर आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये फिल्म नहीं, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे पूरे गाने का वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।
3: सनसनाए क्यों जिस्म थर थराए कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हम आपके एक और एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देयर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके एक और देखे क्या।
2: ये है नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार, जज करना है तो जज कर लो, मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद हैं। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है, ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए, और अधिकतना गाना वहीं से शुरू होता है, राइट। एंड अब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है। एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते, दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर, आजकल के जमाने के नेम लेबल और हमारे टाइम में स्टिकर कहलाने वाले।
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज स्टेशनरी देखती हूँ ना तो चौंक जाती हूँ। आजकल तुम्हें पता है, जो तुम्हारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप ही आते हैं मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे, और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले, और

लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर्स चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पड़ती तुम्हारी सारा। एंड नाउ कमिंग अप अ ट्रैक जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है, लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में। तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Oof, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना. बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है. बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया. और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक संदीप चौटा. और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देख कर होने लगा कुछ ऐसा असर, खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ. अरे अरे अरे अरे, आप कहाँ चल दिए, अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार. तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा, पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए. तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जींस श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस एक फिल्म के पीछे ये फ्रेंड्स के बीच में लड़ाई हो गई थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम, वहीदा रहमान, शर्मिला टैगोर, जीना तमान एंड आशा पारेख, सबना बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स थे। लेकिन फिर एक फिल्म ऐसी आई जिसकी वजह से शर्मिला टैगोर और आशा पारेख के बीच में ना जय जय हो गई, वो भी पब्लिकली। पब्लिकली बोले तो मतलब सबके सामने नहीं, लेकिन हाँ फिल्म मैगजीन्स ने इनके बारे में जम करके लिखा। कभी कोई फिल्म मैगजीन आशा पारेख का व्यू लिख रही थी और कभी कोई फिल्म मैगजीन एक्चुअली में शर्मिला टैगोर का पीओवी लिख रही थी। वेल, कौन सी थी ये फिल्म अभी आपको बताऊंगी, वापस श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शर्मिला टैगोर का कहना था कि वो फर्स्ट चॉइस थी फॉर दिस फिल्म, और उसके बाद जब उन्होंने एक फिल्म मैगजीन को इंटरव्यू दिया और यही बात कोट कर दी तो भाई घमासान मच गया दो दोस्तों के बीच में, क्योंकि आशा पारेख का कहना था कि वो कभी भी सेकंड चॉइस नहीं थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म कटी पतंग, जिसमें थे राजेश खन्ना जी, शक्ति सामंत ने ये फिल्म बनाई थी। एंड कहते हैं कि भाई शर्मिला टैगोर ने कहा कि ये फिल्म सबसे पहले उनके पास गई थी, शी डिनाइड डूइंग द फिल्म क्योंकि शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, तो फिर वो ये फिल्म कर नहीं पाई एंड इसीलिए फिर इसका रोल गया आशा पारेख को। आशा पारेख ने जब ये आर्टिकल पढ़ा एक फिल्म मैगजीन में, उन्होंने उसी मैगजीन को जाकर के फिर से इंटरव्यू दिया और कहा कि ऐसा कभी भी नहीं था, वो पहली चॉइस थी, शक्ति सामंत उनके पास आए थे ये रोल लेकर के। वेल लेटर ऑन शक्ति सामंत ने ये बात एक्सेप्ट भी की कि उन्होंने सबसे पहले इस रोल के लिए अप्रोच किया था शर्मिला टैगोर को। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कटी पतंग की बातें चलेंगे आज, और इस फिल्म के गाने भी होंगे, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पता है मुझे उस जमाने के गानों की एक बात इतनी खास लगती थी कि गानों में ना सेट्स या फिर विजुअल्स हीरो नहीं होते थे, बल्कि हीरो होते थे लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉन्ग, द हीरो एंड द हीरोइन. अदरवाइज विजुअल्स वर सो सिंपल एंड सो सूदिंग टू आईज. तो अगला जो गाना मैं कटी पतंग का आपको सुनाने वाली हूँ ना, उसमें राजेश खन्ना एकदम नॉर्मल सा कोट पहने हुए हैं, व्हाइट साड़ी में क्लैड हैं आशा पारेख. और आजकल जो विंग लाइनर हम लगाते हैं ना, ये आशा पारेख से ही शुरू हुआ था. मेकअप के नाम पे उन्होंने सिर्फ विंग लाइनर लगाया हुआ है. और उस टाइम पे 90s में चला करती थी ना, पिकनिक मनाते थे हम जाकर के किसी भी ग्राउंड में बैठ जाते थे. सो आशा पारेख एक ग्राउंड में है अपनी सहेलियों के साथ, पिकनिक मन रही है और राजेश खन्ना आने का उनके इर्द गिर्द घूम करके बस कह रहे हैं ये शाम मस्तानी. ये गाना कमिंग योर वे किशोरदा की आवाज, ओनली ऑन पुरानी जीन्स. मैं हूँ श्रेया. फेसबुक और इंस्टा पे यू कैन रीच आउट टू मी, आरजे श्रेया विद लव. दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव इज माई हैंडल.

उस टाइम पे ना विलेंस का भी मेजर रोल होता था हिंदी इंडस्ट्री। पुरानी जीन्स पे आपो श्रेया के साथ एंड प्रेम चोपड़ा काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि वो एज अ फेमस विलेन एस्टैब्लिश हो जाए, जिससे कि उनके पास फिल्मों के रोल आए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। बट आफ्टर दिस फिल्म प्रेम चोपड़ा और बिंदु जी के पास ढेर सारे रोल्स आते थे। वेल, मैं बात कर रही हूँ फिल्म कटी पतंग की, राजेश खन्ना एंड आशा पारेख की ये फिल्म जो कि शक्ति सामंत ने बनाई थी। Well, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस फिल्म में रोल करने के बाद फाइनली उनका ड्रीम फुलफिल होगा। भाई शोले के बाद तो हर कोई गब्बर बनना चाहता था, तो बस प्रेम चोपड़ा इसी लगन में लगे रहते थे कि एक बार वो किसी तरह विलेन का रोल ऐसे क्रैक करें कि हर कोई उनको विलेन के रोल में एक्सेप्ट कर ले। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड फ्रॉम द फिल्म कटी पतंग। इसके बाद बिंदु और प्रेम चोपड़ा के पास इतने सारे रोल्स आते थे कि फिल्में साइन करते करते दोनों थक जाते थे। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक विद मी श्रेया, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आशा पारेख फिल्में तो बहुत सारी कर रही थी, लेकिन कोई भी फिल्म उनका ड्रीम, उनका सपना नहीं पूरा कर पा रही थी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ और आशा पारेख की बात कर रही हूँ, यानी कटी पतंग की बात कर रही हूँ। वेल, आशा पारेख बैग्ड फिल्म फेयर अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस फॉर द फिल्म कटी पतंग। आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने ढेर सारे विद मी श्रेया। और सुनो, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे आराम से कह सकते हो। आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHRUYA श्रेया विद लव इज माई हैंडल।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म कटी पतंग टुडे। वेल, शक्ति सामंत ने डायरेक्ट की थी, काका यानी राजेश खन्ना थे एंड इसमें थी आशा पारेख। अच्छा, आराधना इससे पहले रिलीज हो चुकी थी शक्ति सर की, सो ही डिसाइडेड कि क्योंकि आराधना के गाने इतने सुपर डुपर हिट हुए थे, ही डिसाइडेड कि वो अपनी म्यूजिक टीम सेम रखेंगे, यानी आर टी बर्मन साहब का म्यूजिक रहेगा, आनंद बख्शी साहब के लिरिक्स रहेंगे और किशोर दा ही सारे गाने जो हैं वो गाएंगे फॉर काका यानी राजेश खन्ना। अब भाई राजेश खन्ना पे जितने भी पिक्चराइज गाने थे वो किशोरदा कटी पतंग के लिए तो गा ही रहे थे, लेकिन एक ऐसा गाना हुआ जिसमें किशोरदा आउट ऑफ इंडिया थे और शक्ति सामंत को ये गाना पिक्चराइज करना था, शूट करना था, तो फिर उन्होंने मुकेश जी को बुलाया और मुकेश जी ने ये खूबसूरत गाना गाया। वेल, इस गाने में एक बोट है, उस बोट पे काका है, उस बोट पे खूबसूरत ब्यूटीफुल लुकिंग आशा पारेख है वो एंड क्लैड इन अ वाइट साड़ी और उनका वो विंग लाइनर भी लगा हुआ है और राजेश खन्ना नाव चला रहे हैं और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नैनीताल की नैनी झील का यू नो सीन है। इसी गाने की तरफ आपको ले जाते हुए मैं हूँ श्रेया।

सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

It's hot. Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ और बैक टू बैक आज कटी पतंग फिल्म की बात हो रही है। वेल, अगला जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ ना, ये गाना एक्चुअली में एक बंगाली गाने से इंस्पायर्ड था। आर डी बर्मन साहब ने इस गाने को कंपोज किया था, आनंद बख्शी साहब ने इसको लिखा था और पियानो पे बैठे होते हैं काका यानी राजेश खन्ना और आशा पारेख ना उस कश्मकश में है कि अब वो एक विडो हो चुकी हैं, वो इस लड़के की बातों में या इसकी मोहब्बत में नहीं आ सकती, पर दिल कहाँ मानता है ये उनके चेहरे पे साफ दिखता है। सो कहते हैं कि शक्ति सामंत ने जब ये सब्जेक्ट उठाया था तो उन्हें लगा था कि शायद इंडियन ऑडियंस इस बात को एक्सेप्ट ना करेगी, बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था। बट देन ही रियलाइज्ड कि कुछ अलग करना पड़ेगा लोगों को, समाज को, जो कुछ ऐसी रीतियां हैं जो यू नो शुड बी चेंज्ड फॉर बेटरमेंट, वो दिखानी पड़ेगी। और तब उन्होंने बनाई कटी पतंग। इट वॉज बेस्ड ऑन अ नॉवल एज वेल। पुरानी जीन्स पे प्यार दीवाना होता है कमिंग अप राइट नेक्स्ट फ्रॉम दिस फिल्म कटी पतंग। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

बिंदु जी को जब डायरेक्टर शक्ति सामंत ने ये बताया कि उन्हें एक डांस नंबर परफॉर्म करना पड़ेगा, तो बस वो काफी नर्वस हो गई थी। लेकिन वो चाहती थी कि ए ग्रेड फिल्मों में उन्हें किसी तरह एक ओपनिंग मिल जाए। वो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती थी, तो उन्होंने इस फिल्म में डांस नंबर करने के लिए अग्री कर लिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और मैं बात कर रही हूँ कटी पतंग की। एंड द डायरेक्टर जिन्होंने भाई बिंदु जी को ये बात बोली थी वो शक्ति सामंत, द मैन हु डायरेक्टेड दिस ब्यूटिफुल फिल्म कटी पतंग। लेकिन जब बिंदु जी को ये ब्रीफ मिली कि उन्हें एक कैबरे परफॉर्मेंस देनी है, और वो काफी नर्वस हो गई। वेल, जब ये गाना सामने आया तो लोग तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल भर देते थे। बिंदु जी का ब्यूटिफुल एंड वेरी हॉट परफॉर्मेंस इन द सॉन्ग मेरा नाम है शबनम। पंचम दाया ने आरडी बर्मन साहब खुद उतरे थे मैदान में गाने के लिए दिस सॉन्ग विद आशताई। इस गाने के बाद बिंदु जी को ढेर सारे ऑफर्स आने लगे। यही गाना कमिंग योर वे। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो।

ए पैसा ना मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो राज की, पर राज राज ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

उस रोज रात भर शनि बजती रही, मैं थी तुम थी और वो शर्माओ नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ, एंड आज कटी पतंग की बातें चल रही हैं और इस फिल्म के गाने. वेल, मुझे लगता है कि उस टाइम के लिए बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था. आशा पारेख जो कि एक विडो थी, वो प्यार तो करती हैं राजेश खन्ना से, लेकिन वो ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती. राजेश खन्ना जो उनसे बहुत प्यार करते हैं समाज के चक्कर में, वो अपनी बातें एक्सप्रेस तो करते हैं पर तो उस टाइम के लिए बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था. वेल, इस फिल्म के बहुत खूबसूरत गाने हैं जिनको आर डी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लिखने वाले हैं आनंद बख्शी और गाए हैं मोस्ट ऑफ देम किशोर दा ने. सो अगला जो गाना है, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री का पहला गाना था जिसमें ब्रेकअप पे जुबान से भले ही कड़वे शब्द निकल रहे हों हीरो के यानी राजेश खन्ना के, पर जब आप इस गाने का पिक्चराइजेशन देखोगे तो मुस्कुरा रहे हैं और अपना गम ना मुस्कुराहट से निकालते जा रहे हैं. ये जो मोहब्बत है, कमिंग अप राइट नेक्स्ट. मैं हूँ श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

होली पे ये गाना ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और मुझे लगता है कि आर डी बर्मन साहब ने और आनंद बख्शी साहब ने किशोर दाने मिलकर के ना आपको हमेशा के लिए होली का एक गाना दे दिया इन द फिल्म कटी पतंग। वेल, आज इसी फिल्म की बातें हो रही हैं, इसी फिल्म के गाने हो रहे हैं, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप होली सेलिब्रेट करो और ये गाना ना हो। वेल, इस गाने में ना काका यानी राजेश खन्ना कोशिश तो करते हैं कि वो आशा पारे को कलर लगाएं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आशा पारे की एक विडो दिखाई गई हैं उस ज़माने की, तो ये करना पॉसिबल नहीं था। लेकिन उनको छेड़ते हुए वो बाकी सबको कलर लगा देते हैं। आज ना छोड़ेंगे, बस समझो ली। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आरटी बर्मन साहब और आनंद बख्शी ने मुझे लगता है कि अपने सारे मेलोडीज का जो बटुआ होता है ना वो खाली कर दिया था इन दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ कटी पतंग की बात हो रही है और मैं बातें कम इस फिल्म के गाने ज़्यादा सुना रही हूँ। वेल जनरली ऑल ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ दिस फिल्म वर पिक्चराइज ऑन ऑफकोर्स काका यानी राजेश खन्ना एंड फिल्म की हीरोइन आशा पारे, लेकिन ज़्यादातर गाने जो है ना लाइक 10 में से जो 9 गाने नहीं 8 गाने हैं वो किशोर दा ने गाए हैं या फिर मुकेश जी ने गाए हैं, यानी दे आर पिक्चराइज ऑन काका। लेकिन एक गाना जो कि लता जी ने गाया है जो पूरी फिल्म की थीम पे है कि कैसे आशा पारेख जो एक विडो हैं, बचपन में ही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से यू नो वो एक विडो हो जाती हैं, वो चाहती तो हैं कि उनकी ज़िंदगी फुल पतंग की तरह उड़े, लेकिन क्योंकि समाज में ऐसे रीति रिवाज हैं कि उनकी ज़िंदगी कटी पतंग हो गई है। एंड इस गाने में ना राजेश खन्ना एक कमरे में बंद हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दूर हो जाए आशा पारेख से, वो उनसे प्यार ना कर बैठे, पर ऐसा होता कहाँ है। दिल और प्यार उस इंसान को ना उसका कास्ट रिलीजन उसकी सिचुएशन देख करके नहीं आता, ये तो बस आ जाता है सामने वाले पे प्यार। यही गाना कमिंग योर वे। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, बट ऐसे कहाँ जाती हूँ, हाईवे पे आपको लेके जाऊंगी। वेल, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों पे है जो चाहते हैं कि उनकी जाना जो है वो थोड़ी देर और रुक जाए, उनसे दो बातें और करके जाए, लेकिन जाना तो घर वापस जाना चाहती है और वो ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाहती है लोगों को कि वो आपसे मिलने आई थी, लेकिन आप चाहते हैं कि दो से और चार बातें हो जाएं। तो भाई आपके लिए गाना, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक विद मी ऐसे वन टू वन तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल। ऑन दैट नोट, गुड नाइट।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देखो कोई अच्छा जॉनरा या बड़ा जॉनरा देखने का मजा तब है ना जब वो खुल के सामने आए, ऐसा नहीं कि एक आध मूवी आ गई उसके बाद गायब। इसीलिए आई थिंक ये मूवी बन रही है एक एलियन साइफाई मूवी जो कि बहुत बड़े लेवल पर बन रही है, एंड इट इज एक्चुअली गेटिंग ट्रेंड। क्योंकि ट्रेंड से ही तो ट्रेंडिंग होता है इंसान। एक्चुअली अक्षय कुमार एक मूवी में काम कर रहे हैं जिसकी आधी शूटिंग हो चुकी है, मूवी का नाम होगा समुक। ये अगले साल हमें देखने को भी मिल जाएगी और ये इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े बजट के साथ बन रही है कि शायद ये वो सारे पाप धो देगी जो उन्होंने कुछ साल पहले जोकर नाम की मूवी करके किया था। इफ यू रिमेंबर देन आई एम सॉरी फॉर यू, इफ यू डोंट रिमेंबर यू आर रियली गुड इन योर लाइफ। एक्चुअली जब हम एलियन मूवीज के बारे में बात करते हैं तो हमें तीन ही मूवीज दिमाग में आती हैं, कोई मिल गया, पीके और जोकर। कोई मिल गया और पीके तो फिर भी काफी अच्छी चली थी, लेकिन जोकर मूवी एक्चुअली जोकर ही रह गई थी। और ये जो समुक मूवी आ रही है अक्षय कुमार की, ये कितने बड़े बजट पे हमें इससे पता लगता है कि इसमें ऑस्कर नॉमिनेटेड क्रीचर इफेक्ट्स आर्टिस्ट एलेक गिलिस हैं जिन्होंने एलियन और प्रीडेटर जैसी बड़ी हॉलीवुड मूवीज में काम किया है। इसके अलावा एक्शन सीक्वेंसेस के लिए बुलाया गया है ल्यूक टम्बर को जो कि मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग और वेनम जैसी बड़ी मूवीज में काम कर चुके हैं। सो यस, आई थिंक फाइनली हमें एक बड़े अच्छे लेवल की एलियन मूवी देखने को मिल सकती है जिससे अक्षय कुमार अपने पिछले सारे पाप धो देंगे जो जोकर करके उन्होंने किए थे। तभी कहते हैं रिग्रेट इंसान से काफी बड़ी चीजें करवा देता है। डू यू अग्री विद मी ऑर नॉट? खैर ये तो अगले साल ही पता लगेगा जब ये मूवी फाइनली रिलीज होगी। फिलहाल कुछ बढ़िया से गाने सुनेंगे ओनली ऑन मिर्ची। मेरा नाम क्रिश है, इट्स हॉट।

फाइनली 9 साल बाद नई लिस्ट आई एंड पीपल वर एक्चुअली हैप्पी सीइंग दिस। पिछले हफ्ते सीबीएफसी की एक नई लिस्ट आई जिसमें नए मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। 18 मेंबर्स की ये टीम एक्चुअली 9 साल बाद चेंज हुई है, बट दिस टाइम ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो अगले 3 साल में क्या क्या होने वाला है वो हमें अभी तो पता नहीं चल सकता, लेकिन इसके लिए अब एक नए रूल्स की लिस्ट भी निकाली गई कि क्या क्या चेंजेस सीबीएफसी में किए गए हैं। देखो, इसमें ना मैक्सिमम चेंजेस जो हैं वो सब सेम ही है कि आप ज़्यादा गोर और वायलेंस नहीं दिखा सकते, कुछ ऐसे सीन्स नहीं दिखा सकते जिनकी आवश्यकता आपको प्रॉपर ना हो इन द मूवी स्टोरी। जैसे कई बार होता है कि आप कोई मूवी देखते हो तो उसमें कुछ सीन्स की जरूरत नहीं होती। रीसेंट एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है टॉक्सिक मूवी का। हमें पता है कि उसमें मैक्सिमम सीन्स की जरूरत नहीं थी। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, रोमांस रोमांस रोमांस, रोमांस प्रो मैक्स तक चला गया था, लेकिन स्टोरी बीच में गायब हो गई थी। तो ऐसा ना हो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली गई कि भाई ये सब मत करो जब तक वाकई में मूवी में जरूरत ना हो। लेकिन इसके ऊपर भी सोशल मीडिया पे एक अलग वॉर छिड़ गई कि क्या बात कर रहे हो आप, अगर किसी को एक्शन ही देखना हो तो, अगर किसी को रोमांस ही देखना हो तो इसके लिए अलग मूवीज बनती हैं, आप वो देखें, वो आप अपने घर में बैठ के आराम से देखें। ये थिएट्रिकल रिलीजेज और OTT रिलीजेज जो होती है ना, जो ए ग्रेड मूवीज होती हैं, इनको हैंडल कर लेंगे हमारे सीबीएफसी। नए मेंबर्स की लिस्ट में पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े नाम हैं, प्रियदर्शन जैसे नाम हैं, रूपाली गांगुली, प्रीति जिंटा एंड सुनील शेट्टी एंड सम मोर पीपल जिन पर मेरा थोड़ा एक्चुअली पिछली टीम से ज्यादा ट्रस्ट है। बट लेट्स सी, 3 साल के लिए आए हैं, 3 साल में ज्यादा मूवीज पे बैन ना लगे हम तो यही चाहते हैं बस, बिकॉज वी आर टायर्ड ऑफ इट। Do you agree? I know you do. सर हिल रहा होगा आपका। बताना मुझे मिर्ची क्रिश के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ। KRISH is the spelling of my name. This is मिर्ची, it's hot.

अच्छा, ये तो आप अग्री करोगे कि अब गरबा इवेंट सिर्फ गुजरात साइड नहीं रह गए, ये आ गए हैं पूरा वर्ल्ड वाइड। ऑफ कोर्स हर टाइप की कम्युनिटी इसको अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करती थी पहले भी, लेकिन जब से सोशल मीडिया बढ़ने लगा तब से ये ट्रेंड हर जगह आने लगा कि हर साल अब गरबा से रिलेटेड शॉपिंग होगी, एक्सेसरीज अटायर सब कुछ खरीदा जाएगा। ऐसे में बड़े बड़े ब्रांड्स पीछे कैसे रह सकते थे। अब एक बड़े से ब्रांड ने एक 8 लाख का नवरात्रि स्पेशल हैंडबैग लॉन्च किया है। यस, एंड ये 8 लाख का इसलिए बिकॉज इसमें 39,500 बीड्स लगे हुए हैं, 475 मिरर्स लगे हुए हैं। देखने में लेकिन आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि गुजरात के अगर आप नॉर्मल स्ट्रीट पर जाकर एक बैग खरीदोगे जो कि आपको 500 रुपए का मिल जाएगा। अब आप सोचो कि आपने सिर्फ 2 या 3 दिन के इवेंट पर जाना है तो उसके लिए आप 8 लाख का बैग प्रेफर करोगे या 500 रुपए का। आई नो वॉट आई विल प्रेफर, बट एनी वेज मैं कह रहा हूँ ट्रेंड इतना बड़ा है कि ब्रांड्स तो ब्रांड्स, मीम्स तो मीम्स। क्योंकि पिछले दिनों मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा जिसपे लिखा था रेंट अ गरबा पार्टनर। यस, दिस इज ट्रू। अब ये ऑथेंटिक है या नहीं ये नहीं पता, बिकॉज ये एज अ मीम डाला गया था, एक पोस्टर आया था जिसमें पूरा पैकेज लिखा था, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, यानी वो पार्टनर आपके साथ जाके गरबा करेगा, साथ में सेल्फीज लेगा तो कितने पैसे लगेंगे। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि इज दिस दैट इंपॉर्टेंट, आप अपने दोस्तों के साथ भी तो जा सकते हो। बट ये सिर्फ मेरा मानना है, आप मुझे बताना इज दिस क्रेज फॉर गरबा ट्रू या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया एस्थेटिक्स के लिए है। जस्ट अ थॉट, मेरा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि गरबा करो, मजे करो, लेकिन ये एस्थेटिक्स के चक्कर में आप रेंट मत करना पार्टनर या 8 लाख का बैग मत खरीदना, बाकी आपकी मर्जी। दिस इज मिर्ची, मेरा नाम क्रिश है, इट्स ऑल। Authentic, original, and better than our rivals.

नहीं, कौन कहता है बॉलीवुड में हॉरर मूवीज नहीं बनती, हमसे बात तो करो। बिकॉज आज के पांच का पंच में वी आर टॉकिंग अबाउट पांच पावरफुल हॉरर मूवीज जो कि बॉलीवुड ने बनाई थी। कुछ साइकोलॉजिकली हैं, कुछ मेंटली हैं, कुछ सही में आपको डरा देने वाली हैं। सो इनमें से दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 5 पर थी बुलबुल स्टारिंग तृप्ति डिमरी, नंबर 4 पर थी 13B फियर हैज अ न्यू एड्रेस स्टारिंग आर माधवन। अब आते हैं नंबर 3 पर, अ क्वेश्चन मार्क नाम की ये मूवी 2012 में आई थी, विच इज अ फाउंड फुटेज हॉरर जॉनरा मूवी डायरेक्टेड बाय एलिसन पटेल। इस जॉनरा की मूवीज एक्चुअली इंडिया में अभी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करी गई हैं, बट दिस मूवी इज रियली गुड। पूरी मूवी आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, लाइक रॉ फाउंड फुटेज, जिसमें 7 कॉलेज फ्रेंड्स वेकेशन में पहाड़ों पर गए हैं और यहाँ वो अपना फीचर फिल्म का असाइनमेंट भी शूट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उन 7 लोगों के अलावा और भी कोई है, वो आपको देख लेना। फिर आता है नंबर 2 पर ओजी राम गोपाल वर्मा जी की ओजी मूवी भूत। 2003 में एक ऐसी मूवी बनाना जिसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा CGI VFX कुछ भी यूज नहीं कर रहे हो, सिर्फ लोगों को पावरफुल परफॉर्मेंसेस के थ्रू डरा रहे हो, ये काम है ओजी RGV यानी राम गोपाल वर्मा का। स्पेशली बाय द परफॉर्मेंस ऑफ उर्मिला मातोंडकर, जो कि इस मूवी में एक वाइफ बनी है जो कि पजेस हो जाती है। इसके आगे जस्ट वॉच इट एंड यू विल डेफिनेटली लव इट। अब बचती है नंबर 1 की मूवी और एक मेरी तरफ से स्पेशल मेंशन जो कि आज भी आपको डराता है, वो कौन सी मूवीज हैं गेस कर सकते हो? सोशल मीडिया पे मिर्ची क्रिश के नाम से मिल जाऊंगा, KRISH इज द स्पेलिंग ऑफ माय नेम, वहां बताना इफ यू आर एबल टू गेस द फर्स्ट नंबर की मूवी। दिस इज मिर्ची एथार्ट।

0: जी
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की?
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: अर 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।